0: अलावा शोर नहीं, शोर नहीं, शोर शोर
1: पवन करे शोर। ठीक है,
2: मैं आपको ठीक बोलने की मेरी हिम्मत का सारे आके मार देंगे मुझे।